0: Laika Gold. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
6: ना रुके, क्लासिक ना हमें, आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे
1: तुम ऐसा करो, ये गाओ मैं।

0: लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02023963575। Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai।
4: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

पहन कर कैसा तू दे थांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे थांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे।

0: है Leica Gold.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने Leica Gold पर.

तो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध।

सुनिए हाथ वैसगा, नानक भक्तां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी ना

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म

0: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: ब्रेकफास्ट विद दीप राजा,
2: ईजिंग यू इनटू योर संडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दिस इज दीप राजा।

0: Breakfast with Deep Roger.
1: Okay, just coming back very quickly with the response that you gave me. Do you think the power of prayer works when people say, don't worry, all will be okay? Most of you have said the same thing. Yes, they are words, but they comfort you, and that's true. But one guy, and I'm not going to mention any names, he said, Deep, it does work. I said, what do you mean? He said, I had very, very painful chemotherapy and cancer and stuff, and my mum just said, keep the faith, keep the faith, hold the faith. And as I did, and the pain was there, it got better, and eventually I was cured. So, yes, the power of prayer and faith and good words does help. Leading the next songs up to the news, and then I'll speak to you all after that. Good morning!
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 a.m.
3: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Laika Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Laika Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: London walo, dhyan se sun lo, ke furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture par bhari chhoot ka fayda uthaiye. Gaddon aur almariyon par zabardast katauti, sabhi diwan sets ke saath bilkul muft headboard, sabhi saman tatkal delivery ke liye dastiyab hain. Jaldi kijiye, ye flash sale somvar sham 6 baje khatam ho jayegi. Aaj hi hamare Harrow Picklewood aur Slough ke शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gama Pa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
6: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथहॉल ट्रेवल Auto protected.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
7: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
8: She can't hear you, but danger always hears her coming.
9: Sab dar bhag jaye.
8: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
0: Breakfast with D

0: मौसी साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड्स से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Breakfast with Deep Roger. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इसकी चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मोटे।
0: इसके दांत तो देखो।

0: Parental Protected.
1: Life doesn't always send a warning. A family matter, a property issue, an immigration concern, or a business dispute. When things feel complicated, Rack Law solicitors bring clarity, care, and trusted legal support. From family, property, and immigration to corporate law, your matters, our expertise. Call Rack Law solicitors on 0203 345 2000 or visit racklaw.co.uk.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
3: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
4: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
5: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a देसी तड़का is total risk, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 मजेदार flavors.
5: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
4: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
0: Breakfast with Deep Rancher.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: काजल्स कटोर फॉर एवरी सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस
3: डिस्कवर काजल्स कटोर साउथ हॉल द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे साउथ हॉल UB1 1LR
2: एक्सप्लोर एक्सक्विजिट ब्राइडल वेयर ग्लैमरस पार्टी वेयर ब्यूटीफुल ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड स्टाइलिश आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन
3: प्लस लाइक लिसनर्स गेट 10% ऑफ ऑन ब्राइडल वेयर एंड पार्टी वेयर ओपन 7 डेज अ वीक
2: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit kajalscouture.co.uk.
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैलसिल इलफोर्ड में
4: सच
5: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयाँ और अपने पन की खुशबू सब एक ही जगह
2: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैलसिल इलफोर्ड IG26HA कॉल करें 07555-506-015 बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
7: Dreaming of paradise?
2: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
7: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
2: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923-883-100. That's 01923-883-100.
5: યુરોપ
4: ના 3-9 દિવસ ના ટૂર
5: ફ્રાન્સ સ્વિટરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
4: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
5: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
4: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર
5: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
8: એટ બ્રેસ્ટ કેન્સર નાઉ વી નો ચેકિંગ યોર બ્રેસ્ટ કેન ફીલ ડોન્ટિંગ બટ ઇટ્સ અ સિમ્પલ એઝ TLC Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
9: Laika Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Okay. Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.
1: Deep Roger, making you feel good every weekend breakfast.

0: लीजिए, इन्होंने कहा कि जब तक रहे तन में जिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप ये वादा करें कि जब तक रहे कानों में सुनने की क्षमता, आप हमारे लिए और हमें ही सुनते रहे। इस तरह का वादा मैं भी आपसे चाहती हूँ, लेकिन वादे की जरूरत नहीं है। आप सब ऑलरेडी मेरा साथ देते हैं, ये मैं जानती हूँ। ये आपके मैसेजेस बताते हैं और ये बातें आप खुद बताते हैं जब आपसे मुलाकात होती है। तो कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम में एक बार फिर से हम सब हंस कर मिलकर अच्छी अच्छी बातें कर आगे बढ़ेंगे। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं जानती हूँ, और सभी सुनने वालों को ये बताती चलूँ कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा हूँ, और जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। दो बैक टू बैक गाने आप सुन चुके हैं। पहला गीत आशा भोसले की आवाज में समाधि फिल्म से था, और दूसरा गीत भी आशा जी की आवाज में था, और साथ दे रहे थे अमिताभ बच्चन। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, जब तक रहे तन में जिया, और दो लफ्जों की है दिल की कहानी। ऐसे गाने सुनवाती रहूंगी, आप साथ देते रहिए। और प्रोग्राम में आज आप जोड़ी नंबर वन सुनते हैं ना, तो बताऊंगी कि आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो लीजिए, फीफा 2026 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कल इंग्लैंड ने थर्ड पोजीशन के लिए मैच जीत लिया, और कल होगा फाइनल संडे को जो है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में। लेकिन आप 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब हो सकता है जब आप उन्हें मेंशन करेंगे क्या लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Leica Gold.

0: खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज, अभिजीत भट्टाचार्य। तभी तो जब उनका शो देखने गई थी तो मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि उनके गाने बहुत ही अच्छे हैं और उनकी आवाज़ में जो पावर है उसे सुनकर बस मज़ा ही आ गया था। जब भी उनकी आवाज़ में ये गीत सुनती हूँ तो वो शो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बागी फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें ये शानदार म्यूज़िक था आनंद मिलिंद का, और 90s के बहुत खूबसूरत गीत इन्होंने बनाए हैं आनंद मिलिंद। और हमारे गिरीश जी कहते हैं कि गाना बहुत सुंदर है लेकिन फिल्म में नहीं था। तो गिरीश जी, मुझे लगता है कि ये गाना फिल्म में था। मैंने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म में बहुत लड़ाई, मार काट, और वो जो अमरीश कौन सा था, वो क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो विलन बने थे, क्या नाम था उनका, मेरे दिमाग से निकल गया है। उन्होंने ऐसी खतरनाक वाली एक्टिंग की थी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। आप में से किसी को नाम याद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वो मेरे मुंह पर है लेकिन निकल नहीं रहा है। सदाशिव अमरापुरकर, ओ यस यस, सदाशिव अमरापुरकर शायद उनका नाम था, और क्या खतरनाक वाली एक्टिंग उन्होंने की थी। एनीवेज, ये गाना जिन जिनको पसंद है उन सभी के नाम पर करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है आप सभी के मैसेजेस पर एक नज़र डालने का।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ye hai Laika Gold 10:35 AM। बिल्कुल सही सुना आपने, ये आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क ही है। एक बार फिर से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और आप सभी को गुड मॉर्निंग। ढेरों ढेरों मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू संध्या बाबसर जी, आज आपका ही नाम सबसे पहले लेते हैं, नहीं तो आप बहुत लंबे लंबे आंसू बहाती हैं। स्वागत है आपका। जैनुद्दीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, और आज बड़े दिनों बाद मीना लखानी जी आपका मैसेज आया है और जानकर अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस यही कहूँगी, खुश रहा कीजिए, जिंदगी में चिंताएं परेशानी तो सबके आती हैं लेकिन हमें अपने लिए भी तो जीना है, इसलिए उन चिंता परेशानियों को एक तरफ करके खुश हो जाया कीजिए। जब भी परेशान हो तो अपने दिल से ये कहा कीजिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे परेशान नहीं रहना है, मुझे खुश रहना है, और उस समय वो काम करना शुरू कर दीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है ना, सिंपल। चलिए, खुश रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए। सुरजीत जी स्लाव में सुन रहे हैं, तृप्ति हैं हमारे साथ, हिमांशु पटेल जी स्वागत है, नरेंद्र बागिया जी आपने भी आज 4 लाइनें हमारे साथ शेयर की है, और आपने लिखा है कि सागर में गहराई होती है, यादों में तन्हाई होती है, इस बिजी लाइफ में कौन किसको याद करता है, अगर कोई करता है तो उसकी याद में सच्चाई होती है, जैसे हम आपको करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही लिखा, आप हमेशा ही हमें याद करते हैं और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परविंदर मथारू कहती हैं, शुरू के 2 गाने सुनवाकर मजा बांध दिया, क्या बात है। गीता हर्षद जोशी जी, बहुत धन्यवाद। शब्बीर जी, आज बड़े दिनों बाद आप भी प्रोग्राम में आए हैं, और आपने भी हमेशा की तरह आज 2 लाइनें हमारे साथ शेयर की हैं, और आप लिखते हैं कि बड़े अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे पर बिछड़ने का गम ज़रूर दे जाते हैं, क्या बात है। आप हमेशा ही बहुत खूबसूरत लाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं, स्वागत है आपका इस शो में, और बड़े दिनों बाद मैसेज करने के लिए आपका धन्यवाद। शेखर जी, सतरंगी प्रोग्राम सुनने के लिए बेकरार हैं, तो बस शुरू हो गया है, आधा घंटा बीत भी गया है। थैंक यू सहर जी, थैंक यू नंदा प्रवीण बेल्जियम से, प्रीति जी, हंसा जी, मृदु जी, एंड ऑफकोर्स राजकुमार जी, आपको हमारी राम राम। ये है हमारे हरीश खत्री जी, और साथ में है अनिल सोनी जी, कहते हैं कल बहुत बिजी था तो रेडियो सुनना भूल गया, क्या बात करते हैं अनिल सोनी जी, कैसे आप रेडियो सुनना भूल गए, मैं इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे गाने लेकर आती हूँ और आप रेडियो सुनना भूल जाते हैं, आप अलार्म क्यों नहीं लगाते हैं, अलार्म लगाइए, सेट कीजिए कि 10 बजे ऋतु शर्मा शो सुनना है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जो भूल जाते हैं उनके लिए ये सजेशन है, ताकि फिर आप मुझे ये ना कहें कि हम आपको सुनना भूल गए। एनीवेज, सभी का स्वागत है, सभी का धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी अच्छी लाइनें मेरे साथ शेयर की हैं, तो 4 लाइनें मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स,
0: और वो ये कि 2 लफ्जों में सिमटी है ये कायनात, 2 लफ्जों में सिमटी है ये कायनात, एक तेरा जिक्र, एक मेरी अधूरी बात, धड़कने गाती हैं बस तेरा ही तराना, बिना तेरे हर लम्हा जैसे एक रात। ये जो लाइनें हैं ये मेरी ओर से आपके लिए, और अगला गाना भी मेरी ओर से आप सबके लिए।

0: लीजिए रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में एस डी बर्मन की म्यूजिक पर यह गाना था बॉम्बे का बाबू फिल्म से। और ऐसा ही एक और गाना सुनवाने वाली हूँ जो 60s की ही फिल्म का है और जिस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत डांस किया था उस जमाने की जाने माने हीरोइन जो एक बहुत ही खूबसूरत डांसर भी थी वैजयंती माला ने। तो आप भी उस गाने के साथ थिरकने के लिए जरा तैयार हो जाइए। सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Yeh hai Laika Gold. Laika
2: Gold. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Laika Gold.
0: तो अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो दुबई चले जाइए। साउथ हॉल ट्रेवल के पास बहुत अच्छी डील्स चल रही है। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
3: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: It's official. Tesco Pet Insurance is the dogs, biscuits. At Tesco, we love pets. And we've been awarded a Which Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat gets the cream of pet insurance. To get a quote, search Tesco Pet Insurance. Cats and dogs aged 8 weeks or over. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Provided by Pinnacle Insurance Limited.
3: This is Ritu Sharma.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub best service with unbeatable price
5: at all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: भाइयों बहनों खुशखबरी 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडिया फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन फैमिली को लाओ फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड गैंडसू इल्फर्ड IG2 6HA बीकानेर वाला नाउ इन इल्फर्ड
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
17: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
18: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
17: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.

0: इस म्यूजिक को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये नौशाद जी के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सिग्नेचर स्टाइल है। गाने के बाद काफी लंबा म्यूजिक उन्होंने दिया है गाने में, और इस गाने में थिरकी हैं वैजयंती माला। जैस्मीन जी कहती है इस गाने को सुनकर मजा आ गया। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू दिनेश पोपट जी, स्वागत है आपका। एंड थैंक यू हेना जासू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऑफ कोर्स हमारे राजेश जी, आपका स्वागत है। एंड अरुणा जी, आप सब ने गीत को पसंद किया है और इस गाने में क्या मिठास थी, और यही तो खूबी है पुराने गीतों की। और ऐसे ही पुराने गाने आप सुनते हैं प्रोग्राम की लास्ट एंड फाइनल आवर में, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स हमारे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक फीचर में। लेकिन सेकंड वाले आवर में होती है जोड़ी नंबर वन, और आज की हमारी जोड़ी है अमिताभ बच्चन और राखी की जोड़ी। इनके गाने सुनवाऊंगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले बताऊंगी, आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 95.97 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, auto protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंड disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027
5: Good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
6: She can't hear you, but danger always hears her coming.
7: Sab dar bhag jaye.
6: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Kher, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
8: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
9: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
11: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold, Greater London.

0: ब्यूटीफुल गाना लता जी के आवाज में, एस डी बर्मन का म्यूजिक और हमारे साथियों का कहना है व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू मोहम्मद अय्यूब चौहान जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और भारती दीदी धन्यवाद आपका, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ज्योति जी आपका मैसेज आया है और आपने बताया है कि आज आप अपने हस्बैंड को विश करना चाहती हैं, आज आपकी 45th वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत बहुत बधाइयाँ आप दोनों को। और जीवन के अप्स एंड डाउन्स में आप दोनों साथ मिलकर जिए हैं, हंसे हैं, दुख के दिन भी बिताए हैं, और बस यही चाहूँगी कि ये साथ आपका हमेशा हमेशा यूं ही प्यार के साथ चलता रहे। दोनों को आज की एनिवर्सरी की, आपके एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके अलावा जयश्री जी थैंक यू, ये गाना आपका फेवरेट है, चलिए मैंने आपको नाम किया, आपके नाम किया। और कैंट में सलमा जी काम करते करते रेडियो सुन रही हैं, पूरन कपूर जी जर्मनी में हमारे साथ है, मालती जी स्वागत है आप सबका भी इस प्रोग्राम में। सेकंड आवर चल रहा है और इस आवर में मैं आपको जोड़ी नंबर वन सुनवाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पीछे की ओर, यानी कि हम इतिहास के पन्नों को आज फिर से खोलने वाले हैं, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। आज 19 जुलाई है और आज के दिन भारत के इतिहास के एक बेहद महान हस्ती का जन्मदिन है। आपने नाम सुना होगा, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की जो क्रांति आई थी उसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, सुना है। और उस क्रांति के महानायक जानते हैं कौन थे? अमर शहीद वीर मंगल पांडे, जिनका आज ही जन्म हुआ था। तो सोचा क्यों ना आज उन्हें याद किया जाए, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताई जाए। भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके सबसे बड़े महानायक मंगल पांडे ही थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक कर देश में आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी सुलगाई थी। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें आमिर खान ने काम किया था और फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताती चलूं कि उनका जन्म आज ही के दिन 1827 में यूपी के बलिया जिले में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, नाम से ही पता चलता है मंगल पांडे। और वो अपने जीवन में बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री यानी कि एक सिपाही के रूप में उनकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी में उनकी भर्ती हुई, उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल की छावनी में हुई। और जानते हैं विद्रोह का कारण क्या था? उस जमाने में ब्रिटिश सेना ने एक नई एनफील्ड राइफल शामिल की थी और इस राइफल के जो कारतूस थे उनको मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ये खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई। और तभी मंगल पांडे ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और जब अंग्रेज अधिकारी जो उस समय के थे मेजर हुसैन, उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो मंगल पांडे ने अपनी राइफल से उस पर गोली चला दी और इसके बाद उन्होंने एक और अंग्रेज अधिकारी को भी ढेर कर दिया। और इन सब ने, इस कार्रवाई ने देशवासियों में जोश भरा और उन्होंने एक नारा दिया कि मारो फरंगियों को, क्योंकि उस समय तक भारतवासी उनके जुल्मों से बहुत परेशान हो चुके थे। और आखिर में इस कृत्य के लिए, इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, उनका कोर्ट मार्शल किया। और 8 अप्रैल 1857 को तय तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई, यानी कि छोटी सी उम्र में ही मंगल पांडे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हो गए। और उनके इस बलिदान ने उस समय देश में विद्रोह की आग लगा दी और तब पहली बार सुलगी 1857 की महान क्रांति, जो आगे चलकर काफ़ी बड़ी हुई और लोगों को लग रहा था कि उस समय ही भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ, वो जो हिस्ट्री पढ़े हुए उन्हें पता होगा कि किस तरह से इस क्रांति को दबाया गया। लेकिन एक बार जो आग फूट गई वो रुकने वाली कहाँ थी, 1947 में आखिरकार भारत आज़ाद ही हुआ। लेकिन इस पर बहुत सुंदर फिल्म बनी है मंगल पांडे, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और आमिर खान की फिल्में ज़्यादातर अच्छी ही होती हैं और इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज जब मुझे पता चला कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो क्यों ना ऐसे महान कलाकारों को याद किया जाए, इसलिए आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने उनके बारे में आपके साथ शेयर की। और अब समय है आज की जोड़ी नंबर वन की शुरुआत करने का। और आप जानते हैं हमारी आज की जोड़ी है कौन सी, अमिताभ बच्चन और राखी की जोड़ी। अब देखते हैं कि आज मैंने कौन से गाने चुने हैं बजाने के लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127.9 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज तो कोई मैच नहीं है, लेकिन कल फाइनल मैच खेला जाएगा स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप अपने 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये होगा जब आप उन्हें कहेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: If you're ready to grow your business, at Barclays we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.

0: यस, किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में कस्मे वाली फिल्म से था ये गाना, हमारे आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। और यस, आज ही तो फाइनल मैच है, पता नहीं मुझे लगा कि कल है, संडे तो आज ही है। यस, आज ही है फाइनल मैच और आप सभी को इंतजार है कि देखें कौन जीतेगा ये फीफा 2026 वर्ल्ड कप। और अब हम थोड़ा टेंशन फ्री होकर भी देख पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही है। सो शाम को क्या होता है वो तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये गाना कस्मे वादे फिल्म से लिया था और जिसमें म्यूजिक था आजी बर्मन का, अमिताभ बच्चन और राखी की। एक ऐसी फिल्म जो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में नहीं चली थी, लेकिन गाने तब भी पसंद किए गए थे और गाने आज भी सबको पसंद आते हैं। Feel good track brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. तो चलिए अब सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: बिल्कुल किशोरदा की आवाज में हमारे आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर, और हमारे बहुत सारे साथियों ने याद दिलाया कि ऋतु मैच आज ही है। जी हाँ, बिल्कुल आज ही है, लेकिन वो तो मैं कभी कभी ऐसे कह देती हूँ ये जानने के लिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन आप सब ध्यान से सुन रहे हैं और आप सबने मुझे बताया है कि ऋतु आज संडे है। जी हाँ, आज संडे है और मैच बिल्कुल आज ही है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और आभा शर्मा, आप कहती हैं मैं आपको तो इंडिया नहीं ला पाई, लेकिन आवाज़ को आपकी इंदौर लेकर आई हूँ, मैं इंडिया में आपको सुन रही हूँ। क्या बात है आभा, मुझे भी ले चलती ना, मुझे भी इंडिया गए हुए कितने महीने हो गए और मैं बहुत जल्द जाने का प्लान बना रही हूँ, अभी चली जाती आपके साथ, लेकिन आप इंदौर में सुन रही हैं, थैंक यू। और इंदौर मेरे ग्वालियर से बहुत पास है, मतलब वैसे तो पास नहीं है लेकिन एक ही स्टेट में आता है, तो मुझे खुशबू आ रही है वहाँ से अपने स्टेट की, अपने उसकी। एनीवेज, मज़े के साथ बच्चा अच्छा सा टाइम बिताइए भारत में, और थैंक यू इस मैसेज के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई आज लाइका रेडियो नेटवर्क की टीम पहुंची है रथ यात्रा में, एनुअल रथ यात्रा जो आज ही है संडे को 19 जुलाई को। और आपको बता दें कि ये शुरू हो गई है, आई थिंक, क्योंकि अभी तो 11 बज रहे हैं, SKSST कैंटन हैरो टेम्पल से, और ख़त्म होगी श्री स्वामी नारायण टेम्पल स्टैनमोर में। और जहां पर जो भक्तगण जाएंगे उन्हें भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का भी मौका मिलेगा, और ये सब हो जाएगा हैरो और ब्रेंड की स्ट्रीट से होता हुआ। लाइव अपडेट्स के लिए रवि शर्मा, सरिता सबरवाल वहां पर होंगे लाइका रेडियो लाइका गोल से, और हम अगले घंटे में उनसे आपकी बात भी कराएंगे, बताएंगे भी कि वहां कैसा क्या माहौल है। आप भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, और अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए sksst.org पर।
1: Riti Sharma on Leica Gold. Leica Extra podcast update.
0: तो भाई Leica Extra का नया पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है, और इसका टाइटल है Leica Presenters Takeover, और आप Leica Extra पॉडकास्ट सुन सकते हैं Spotify पर, YouTube पर, Amazon पर, Apple पर, और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर।
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
6: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
9: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
7: London, good news! आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: लीजिए जोड़ी नंबर वन में मैं नॉर्मली दो ही गाने सुनवाती हूँ, लेकिन हमारे कुछ साथी इस गीत को सुनना चाहते थे, इसलिए आज इस गीत को भी जोड़ी नंबर वन में शामिल किया। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, ये गाना कहते हैं आपने बजाकर मेरा दिन बना दिया। और हमारे जैनुद्दीन जी कहते हैं कि व्हाट ए लवली सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो चलिए ये गाना हमने आपके भी नाम पर किया। और गिरीश जी कहते हैं कि मैं इंदौर से हूँ, जब ग्वालियर आए तो इंदौर ज़रूर आइए। तो इंदौर मुझे जाना है ओम कालेश्वर और महाकालेश्वर देखने के लिए, तो इंदौर तो आना होगा, लेकिन इस बार या अगली बार या कब पता नहीं, लेकिन जब आऊँगी तो बताऊँगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Like Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
4: Ye hai.
3: Like a gold.
4: Like a gold.
5: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: London walo dhyan se sun lo ke furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture par bhari chhoot ka fayda uthaiye. Gaddon aur almariyon par zabardast katauti, sabhi divan sets ke sath bilkul muft headboard, sabhi saman tatkal delivery ke liye dastiyab hain. Jaldi kijiye, ye flash sale somvar sham 6 baje khatam ho jayegi. Aaj hi hamare Hero, Picklewood aur Slogo ke showrooms mein aaiye ya phir keyfurniture.co.uk par jaye.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
9: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
9: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
11: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, taste of India now in Ilford.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, Call our London office on 0203963575. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
13: In Dubai.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
17: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
16: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
18: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
1: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: सोनाली वाजपेयी और कुमार शानू की आवाज़ों में था ये गाना फिल्म बाजीगर से। और आपको बताते चलें कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं दिवाली स्टोरी के। ये एक म्यूजिकल है जिसका सोल्ड आउट शो हुआ था रॉयल अल्बर्ट हॉल में, और अब ये एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं ओवो अरीना वेम्बली में ऑन संडे 27 सितंबर। स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। और जिसे क्रिएट किया है सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE ने, एंड इसमें कोरियोग्राफी की है बॉलीवुड डांस स्कूल टीम ने। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। रामायण की बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको दिखाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए www.diwalistory.com पर।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Labour's deputy leaders refuse to rule out nationalising water companies under Andy Burnham's premiership. The new Prime Minister takes over tomorrow. Lucy Powell says the privatised industry hasn't worked. Thames Water's due to run out of money within months, while thousands of South East Water customers currently have no supplies. John Bosco and Webos from the campaign group We Own It.
3: Andy Burnham has obviously gotten the diagnosis of the problem right. We sold off these companies to the private sector in 1989 with £0 and zero pence in debt. And over that period, we've seen those companies loaded up with almost £90 billion in debt.
2: Andy Burnham says he'll be scrapping one of Sir Keir Starmer's flagship policies when he becomes Prime Minister tomorrow. The digital ID programme was expected to cost £1.8 billion over 3 years, money he aims to use to tackle the cost of living. Controversial influencers Andrew and Tristan Tate have been arrested by US marshals in Miami over a series of new charges by UK authorities.
4: We have continued to investigate further offences reported to both Bedfordshire Police and Hertfordshire Constabulary. As a result, 38 new charges in total have now been authorised against Andrew and Tristan Tate, bringing the total number of charges faced to 59.

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग।

0: रफी साहब की आवाज में सावन भादो फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले हम किसी से कम नहीं में किशोर दा और आशा भोसले की आवाजें आपने सुनी। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है, और इस आवर में मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स, और हम खेलते हैं अपना थ्री वर्ड्स गेम भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, और ये है माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन। अपने बच्चों को सर्वोत्तम संभव शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उनका बचपन का जो टीकाकरण है वो समय पर पूरा हो। टीके खसरा और काली खांसी जो वूपिंग कफ है जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदाय में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वे सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीकाकरण हर साल 5,000 से अधिक मौतों को रोकने में मदद करते हैं, और ये जानना आपके लिए मददगार हो सकता है कि NHS द्वारा दिए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से दिए जा चुके हैं। सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण टीके हैं। सही, ये महत्वपूर्ण बात है कि आप इन्हें सही समय पर दिए जाएं। लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो आप उसे लगवाने के लिए अपने GP से संपर्क कर सकते हैं, और आपके बच्चे के टीके की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको रेड बुक में जाके मिलेगी, या फिर आप GP प्रैक्टिस से बात करें और पता लगाएं कि आपके बच्चे के सारे टीके लगे हैं या नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर जाइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128.9 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम की। आज के तीन वर्ड्स जो हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, हमेशा ही हम आज के जो तीन वर्ड्स हैं वो एक बॉलीवुड के गाने से लेते हैं, और आपको उन वर्ड्स की मदद से गीत पहचानना होता है। तो पहला वर्ड है जमी, दूसरा वर्ड है आसमां, और तीसरा है मेहरबा। 1966 की फिल्म है, रफी साहब की आवाज है और RD बर्मन का म्यूजिक है। बताइए कौन सा है ये गाना। पहला वर्ड है जमी, दूसरा वर्ड है आसमां, तीसरा वर्ड है मेहरबा। 1966 की फिल्म है, RD बर्मन का म्यूजिक है और रफी साहब की आवाज है। अगर आपको पता है कि ये गाना कौन सा है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Chase gives you 2% cash back on your everyday spending.
3: Every day? Like Monday's train to work?
2: Yes.
3: Tuesday's big shop?
2: Yes again.
3: Wednesday's coffee treat?
2: Yes, cash back.
3: Thursday's lunch, Friday's brunch and Saturday's takeaway?
2: Yep, yep and yep.
3: Super.
2: Oh, nothing on Sundays.
3: I take it easy.
2: Lovely. Enjoy 2% cash back on debit or credit card spending on groceries, restaurants, everyday transport and fuel. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. Chase current and saver accounts required. Maximum £20 per month. Eligibility qualification. Exceptions and T's and C's apply.
4: Yeah, like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट TravelHubWorld.com।
9: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
10: 25? Seriously?
9: Sounds like Ojo time.
10: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
9: Sorry about the wait. How can I help?
10: You can help me celebrate. I won.
11: Feel the fun. Play Ojo.
12: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply. Sadco.

0: हेलो जी हाँ, ये था बहुत ही खूबसूरत गाना जिसे हमने लिया था फिल्म खानदान से। और आप जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर रवि। और अब हमारे साथ रवि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, रथ यात्रा चल रही है, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो रवि जी, हेलो रवि जी, आप ऑन एयर हैं? हेलो रवि जी, हेलो, लीजिए हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, हम दोबारा आपसे उनकी बात करवाएंगे।
1: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: लीजिए लता जी के आवाज में था ये आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और आप में से बहुत सारे साथियों ने आज हमारे थ्री वर्ड्स गेम को सही सही पहचान लिया और इतने आंसर मिले हैं कि फिलहाल तो मुझे आप सबके आंसर्स देखने का टाइम भी नहीं मिला है, तो मैं देखती हूँ आज चेक कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गाना जरूर सुनवाने वाली हूँ आपको। लेकिन उससे पहले याद दिला दें हम आपको कि अगर आप हॉलिडे जाना चाहते हैं तो आप दुबई जा सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं 0208-574-8410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Chase gives you 2% cash back on your everyday spending.
3: Every day? Like Monday's train to work?
2: Yes.
3: Tuesday's big shop?
2: Yes again.
3: Wednesday's coffee treat?
2: Yes, cash back.
3: Thursday's lunch, Friday's brunch and Saturday's takeaway?
2: Yep, yep and yep.
3: Super.
2: Oh, nothing on Sundays.
3: I take it easy.
2: Lovely. Enjoy 2% cash back on debit or credit card spending on groceries, restaurants, everyday transport and fuel. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. Chase current and saver accounts required. Maximum £20 per month. Eligibility qualification. Exceptions and T's and C's apply.
4: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
7: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
8: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
6: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
7: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
9: Feel the fun, Play Ojo.
8: 18 plus, gamble aware.
9: Star Tour.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
4: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
3: So where do we find something like that now?
4: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
5: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: यार कई बार मुझे अपने गांव के छोले भटूरे याद आते हैं, वही स्वाद वही खुशबू।
7: तो रुक क्यों रहा है, वही देश का असली स्वाद अब मिलता है हाउंसलो के बीकानेर वाला में।
8: सच? अरे बिल्कुल, छोले भटूरे, राज कचौड़ी और मिठाइयों का असली टेस्ट, जैसे माँ के हाथों का बना हो।
9: बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया, अब हाउंसलो हाई स्ट्रीट में। आज ही विजिट करो।
10: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस। Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: What a beautiful song. आप में से ज्यादातर साथियों ने सही पहचाना आज के गाने को। गीता एंड हर्षा जोशी जी, वत्सला जी, अयूब चौहान, तोची पनेसर, नीलखंड, रानी सोहानी, कुकी, करसन विंडोरिया, गिरीश जी, सहर जी, अजिंक्या, अमित पटेल, कुकी, वत्सला, नरेन पटेल जी, उल्लास, दिनेश पोपट जी, विनोद जी, यास्मीन जी एंड केशव जी, सभी का आंसर बिल्कुल सही था।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is £95.9 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Like
4: a gold.
0: चलिए समय आ गया है आप सभी से बाय-बाय कहने का। अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार आपका साथ देंगे गोल पर अनुराग। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी आपके साथ फजीला एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आपके साथ आनंदी। मेरी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी सैटरडे के दिन। मौसम अच्छा है, एंजॉय कीजिए। और आपको बता दें कि इस शो को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आप नॉनस्टॉप क्लासिक सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड 2 ऑनलाइन। पंजाबी गीतों के शौकीन हैं तो लाइका रेडियो पंजाबी। और 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो बैक टू बैक 90s लाइका रेडियो 90s ऑनलाइन जाकर सुन सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शो में मेरा साथ देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
5: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
3: Ye hai
4: Leica Gold.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: London वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
12: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
13: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
14: I'm outside. Yes, literally just landed.
15: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
14: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
15: And you didn't pay those massive roaming charges?
14: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
16: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
17: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
19: She can't hear you, but danger always hears her coming.
20: Sab dar bhag jaye.
19: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
21: Up next, Golden Rock with Unrock on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: News. I'm Imani Rana.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: Hello and good afternoon. मौसम की बातचीत करते हैं. 21 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त का करंट टेम्परेचर. ग्रेटर लंदन का सनी इंटरवल्स एंड जेंटल ब्रीज. सनसेट 9:08 पर.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: Like a gold.
1: On a rock.
2: स्वागत है आप सभी का गोल्डन रॉक संग सूरज सजी सुपर संडे वाली इस महफिल में. मैं हूं आपके साथ अनुराग. बैक टू बैक गानों के साथ कर रहे हैं इस घंटे की शुरुआत. स्लो गाना लेकिन आपको दिलाएगा 90s की भरपूर याद. कहीं मत जाइए, पकड़ लीजिए अपनी अपनी कुर्सियां.
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
1: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: शैलेंद्र सिंह साहब की आवाज में फिल्म जमाने को दिखाना है और इसमें बार बार ये लाइन आ रही थी, होगा तुमसे प्यारा कौन। और यही लफ्ज, यही दरख्वास्त आप लोगों से भी है कि आप लोगों से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आने से पहले ही जब आप व्हाट्सएप की विंडो को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका स्वागत हो चुका है। और बिल्कुल इसी तरह से तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। चलिए बात करते हैं फिल्म जमाने को दिखाना है से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प तथ्यों से। ऋषि कपूर साहब पद्मिनी कोल्हापुरी तो फिल्म में लीड कास्ट में थे ही, लेकिन उस दौर में जो करेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे, चाहे कादर खान हो, अमजद खान हो, असरानी हो, जगदीप हो, इनका भी बड़ा अहम रोल हुआ करता था। बिना इनके फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाया करती थी। अमजद खान साहब इस फिल्म में डबल किरदार में, डबल रोल में नजर आए थे। शरीफ खान शराफत अली, इनका ये अनोखा अंदाज, हालांकि गब्बर सिंह के तौर पर उन्हें खूंखार खलनायक की भूमिका में इससे पहले जाना जाता था, लेकिन नासिर हुसैन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और गब्बर सिंह को एकदम कॉमिक टाइमिंग के साथ दिखाने का उन्हें मौका दिया। और ये खूब कमाल भी रहा, क्योंकि अमजद खान साहब ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से भी ज़्यादा वक्त नहीं लिया, लोगों के दिल में उतर गए। वो खूंखार वाली जो इमेज थी उससे निकल कर एक कॉमेडियन का किरदार भी उन्होंने बड़े ही प्यार से निभाया। ख़ासतौर पर कादर खान जो इस फिल्म के मेन उस वक्त के विलन थे, और उनके बीच अमजद खान साहब की जो डायलॉग डिलीवरी थी, कॉमिक टाइमिंग थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। हालांकि फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन फिल्म के गानों ने इतिहास रच दिया। पूछो ना यार क्या हुआ, इसका क्रेज़ आज भी लोगों के दिलों में है, क्योंकि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत गाना। कहा यह जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और थोड़े दिनों बाद दर्शकों को पता चलना शुरू हुआ कि ये फिल्म बहुत कमाल की नहीं है, लेकिन गाने इतने कैची थे कि लोग सिर्फ फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी जी को देखने के लिए, इस गाने में को मैं देखने के लिए जाया करते थे। और जैसे ही गाना ख़त्म होता था, होगा तुमसे प्यारा कौन, आधी पब्लिक थिएटर यानी कि सिनेमाघर छोड़कर बाहर आ जाया करती थी। लेकिन आपको कुछ नहीं छोड़ना है, अपनी कुर्सी पर बैठे रहिए और लाइका का दामन थामे रहिए। थोड़ी देर में आपकी बात कराएंगे हम रवि जी से या फिर अश्विनी जी से, जो इस वक्त हैं स्वामी नारायण टेम्पल की जगन्नाथ यात्रा में। इस संस्कारी इवेंट से जुड़ने का आप सबको भी मिलेगा मौका। सुनते रहें गोल्डन रॉक की सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन करेंसी में 128 रुपीज़ 90 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold. Laika
3: Gold. Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait. How can I help?
4: You can help me celebrate. I won.
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
7: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
8: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Gorgeous Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit gorgeouscouture.co.uk.
9: London walo, dhyan se sun lo, ke furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture par bhari छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Start to

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आशा दाई और रफी साहब की आवाज में तीसरी मंजिल फिल्म का गाना आपने सुन लिया, और अब जिनकी मंजिल तक पहुंचने को हर एक दिल, हर एक हृदय तड़पता रहता है, यानी कि स्वामी जगन्नाथ जी की यात्रा, जहां पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ अश्वनी जी। और ये
3: जी पूरा जी।
2: कैसी हैं आप अश्वनी जी? आप ऑन एयर हैं, आप बता सकती हैं कि कैंटन से शुरू हुई आज की जगन्नाथ यात्रा का क्या है भव्य इस वक्त स्वरूप?
3: जी जी, तो हम लोग कैंटन से जो यात्रा निकली वहाँ फिरने की बारी आवाज है, तो मैं एक्चुअली एक गाड़ी में आके आपसे बात कर रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे
2: जी।
3: तो भक्तों का जमावड़ा लगा है, 1500 से ऊपर जो है, हमने भक्त शुरुआत में किए थे जब हमने देखे थे तो कम से कम 1500 लोग थे, और उसके बाद में जो है लोग जो है भक्त वो जुड़ते गए, और हम SSST मंदिर से निकले और स्टैनमोर का जो मंदिर है वहां पे ये भव्य यात्रा पहुंचेगी। बहुत जल्लोश है, बहुत उत्साह है लोगों में, और जिस कैसे भक्ति मतलब भक्ति में विलीन होके लोग जब भजन भी गा रहे हैं, इतना सुंदर ये वातावरण है कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे होती है। हालांकि हम लोग काफी लोग टीम में से, रवि जी, सरिता जी, मैं, अलका जी, हम लोग सब यहाँ पे हैं, और एज आई सेड कि आई विश कि हम पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आ
2: नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ
3: इस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं
2: जी अश्विनी जी, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं वहाँ पर मौजूद हुआ करता था, लेकिन इस बार मुझे स्टूडियो के अंदर से आप लोगों को से बात करनी पड़ रही है क्योंकि टाइम ऐसा है, लेकिन मैं बहुत मिस करूंगा इस यात्रा को, लेकिन कोशिश ये करूंगा आपके माध्यम से सब लोग वहाँ पर जाकर जल्द से जल्द जुड़ें, क्योंकि अभी भी है, मौका लगा सकते हैं चौका।
3: बिल्कुल
2: जी, थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आप बाकी के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच,
3: थैंक
4: यू। कह दूं तुम्हें
5: हाँ
4: या चुप रहूं
5: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है?
5: क्या है?

0: किशोर दा और आशा दाई की का जो कॉम्बिनेशन था ना वो भी बड़ा कमाल का था, सीधे दिल में चोट करता था। दीवार फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना, और अगला गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और दिग्गज जोड़ी लता जी और रफी साहब की आवाज में। गाना 80s का है लेकिन आपको ये आज भी उतना ही प्यारा लगेगा जितना इस गाने को रफी साहब लता जी ने उस दौर में गाया था। सुनते रहें गोल्डन राग संग, सुरों से सजी सुपर संडे वाली ये पाठशाला।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: भाई बिल्कुल ऐसा ही साथ है आपका और हमारे यानी कि लाइका नेटवर्क का, तो कहीं मत जाइए। छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से वापस लौट रहे हैं खूबसूरत गाने के साथ। किशोर दा आशाताई की आवाज में गाना है बड़ा ही कमाल का।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
6: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
7: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
5: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
6: Thanks, playtime's over. Mmm. Lovely.
8: Feel the fun. Play
7: 18 plus, gamble aware.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
12: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
16: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
17: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
16: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान। Like a Gold, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: किशोरदा और आशा दाई की आवाज में जॉनी मेरा नाम। तो राजा रानी सब लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले गाने के बाद आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आने वाला है आज का गोल्डन वर्ड। रेडी हो जाएं दिमाग की बत्ती जलाने के लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 129.64 पाकिस्तानी रुपीस, 373.55 श्रीलंकन रुपीस, 440.52 बांग्लादेशी टका, 166 अफगान अफगानी, 88.75 एंड 1 यूएस डॉलर 1.34.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £95.97 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: रवि साहब की आवाज में तीन देवियां फिल्म का, वैसे इस फिल्म के सारे ही गाने अच्छे हैं लेकिन इस गाने के मायने कुछ और ही हैं, और ये वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने रवि साहब को दिल से सुना है। एनीवेज, वक्त आ गया है दिमाग की बत्ती जलाने का और आपको बताने का अगले घंटे की थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड क्या है। भाई देखने की बात हो रही थी तो नैन आज हम रखते हैं, नैन या फिर नैना, याद रखें ये दो शब्द हैं, नैन या फिर नैना। अपने फरमाइश के पिटारे से इन गानों को हम तक आप पहुंचाइए जिसमें नैन और नैना शब्द इस्तेमाल होता हो। सुनते रहिए सुपर संडे वाली महफिल।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
4: साफो ट्रेवल at all protected.
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.com.
7: Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
8: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
9: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
8: सच?
9: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
10: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-06015. Bikanerwala, taste of India now in Ilford.
11: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
15: She can't hear you, but danger always hears her coming.
16: Sab dar bhag jaye.
15: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
17: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
18: On Rug with Golden Rug.

0: 7 days a week on 0208 574 8410.
1: स्वागत एक बार फिर से आप सभी का शुरू से सजी सुपर संडे वाली इस महफिल में। मैं हूं आपके साथ अनुराग। बैक टू बैक गानों के साथ कर रहे हैं इस घंटे की शुरुआत। ऑब्वियसली पहला गाना हमारा यानी कि गोल्डन रॉक की तरफ से होगा। देखते हैं उस चॉइस में कौन आता है। नयन और नैना है गोल्डन बर्ड।
2: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
4: Travel Hub
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: लाइक अ ऑन रॉग विद गोल्डन रॉग।

0: आरती मुखर्जी की आवाज़ में मासूम फिल्म का बड़ा ही प्यारा सा ये खूबसूरत सा गीत। और आपको तो पता ही चल ही चुका है कि आज आपको दिमाग की बत्ती जलानी है सिर्फ नैन और नैना वाले गानों को ढूंढने में। और बहुत सारे गाने हम तक पहुंच भी चुके हैं। दो गाने हमने आपको सुनाए मासूम फिल्म से, इससे पहले दो आंखें बारह हाथ सानुदा अलका याग्निक जी की आवाज़ में। ये दोनों गाने हमने आपको सुनाए हैं गोल्डन राग की तरफ से। हालांकि मासूम फिल्म के इस गाने के लिए दो लोगों ने हमको हम तक ये गाने की फरमाइश पहुंचाई, थोड़ा सा लेट सही, लेकिन उनका नाम सपना जी और कुसुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है, 60s के दौर का ये खूबसूरत गाना, थोड़ी देर में आपके साथ जलाते रहें दिमाग की बत्ती।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 rupees and 90 paise। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
3: Like a radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आ गया है फाइनल का दिन। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। बाकी की अपडेट आपको हम समय पर देते रहेंगे। इसके अलावा याद रखें आपको फ्री 15 मिनट का लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे स्पॉन्सर रैक लॉ को मेंशन कीजिए सिर्फ लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Yeah.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: नैन का चैन चुरा कर ले गई, चंद्रमुखी फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप। 1960 में फिल्म आई थी, मुकेश साहब ने क्या खूबसूरत तरीके से इस गाने को निभाया है और ये गाना हम तक बहुत सारे लोगों ने अपना दिल का पिटारा खोल कर पहुँचाया है। सबसे पहला नाम लेता हूँ वत्सला जी, निर्मल किरीट जी, जगदीश जी, संतोष जी, मीना लखानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को इस महफिल में शुमार कराने के लिए। सुनते रहे सुपर संडे वाली महफिल।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: नैनो में बदरा छाया, लता जी की आवाज में मेरा साया फिल्म का एक और खूबसूरत सा गाना हम तक पहुंचाया था उल्लास जी, सलमा जी फ्रॉम कैंट से और जयश्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप तीनों का ही कमाल का गाना चुना है आप लोगों ने. अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के इस पावन मौके पर. सीधे जुड़ते हैं हम लोग रवि शर्मा जी से. हेलो रवि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. रवि जी, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम जो जगन्नाथ जी की यात्रा है वहां का क्या है रूपरेखा, क्या है हाल, बताएं थोड़ा सा.
2: बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर है, अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो देखिए, बोलो स्वामीनारायण भगवान की
1: जय.
2: यहाँ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उस रथ यात्रा की, जो कैंटन मंदिर से चल करके और लोग उसे खींचते हुए रथ को, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तो वो निकले हैं वहां से. देखिए, जैसा पुरी में होता है, जैसा भारत के कई शहरों में होता है, जैसे विश्व के कई नगरों में होता है, वैसा ही यहाँ भी रथ यात्रा का कार्यक्रम है. और सड़क पर रस्सों से खींच करके भगवान के रथ को लोग श्रद्धालु यहाँ ला रहे हैं. पर यहाँ लोग जो इंतजार कर रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था है, ठंडा सा मौसम है, वो गर्मी नहीं है आज, शायद भगवान स्वामी नारायण की कृपा है. मैं स्वामी नारायण, यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं अनुराग, और आज का कार्यक्रम तो सचमुच बहुत ही और व्यवस्थित रहेगा. यहाँ प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं कुछ लोग, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रसाद बना रहे एकदम ठीक ठाक प्रसाद, मने गुजराती नहीं आवड़ती, बद्दा माणस गुजराती छे. तो एक बार फिर से अनुराग मैं बता दूं आपको, जैसे ही रथ यात्रा यहाँ पहुंचेगी तो स्वागत किया जाएगा, आरती होगी, और उसके बाद आई थिंक देयर विल बी फ्यू स्पीचेस एंड देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद. और यह हर साल का कार्यक्रम है, आपको थोड़ी देर पहले हमने आवाज सुनाई थी.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं
2: हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन हमारे साथ है, और भी कई गणमान्य अतिथि जो है रथ यात्रा के साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन ये जो सब लोग हैं सब जगन्नाथ की राहों में स्वामी का स्वागत और दर्शन करने के लिए. और एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये वुड लेन में स्थित है टेम्पल स्टैनमोर में, जहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था, सुंदर इंतजाम किया गया है भगवान जगन्नाथ के रथ का. तो एक बार फिर से इनकी आवाज आपको सुनवा देता हूँ, जोर से बोलो जगन्नाथ भगवान की, इधर से बोलो स्वामी नारायण भगवान की. थैंक यू वेरी मच अनुराग, वी विल बी इन टच.
1: थैंक यू रवि जी. इस भव्य उत्सव में सभी लोग अभी भी पधार सकते हैं, अभी भी मौका है, 4 बजे संपन्न होगी रथ यात्रा
2: स्वामी नारायण मंदिर वुड लेन स्टैनमोर
1: जी.
2: तो यहाँ आइए और इस विशाल आयोजन में शामिल हो जाइए.
1: बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, थैंक यू. तो ये थे रवि जी जो हमें बता रहे थे जगन्नाथ यात्रा में, अगर आपको भी शामिल होना है तो इस अभी भी है मौका, पहुंच सकते हैं. स्टैनमोर की तरफ बढ़ रही है स्वामीनारायण मंदिर की तरफ ये यात्रा, सुनते रहें.
0: On Rag with Golden Rag. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: कॉल कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल को दुबई जाने के लिए, कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए. नंबर है 02085748410. अटॉल प्रोटेक्टेड.
0: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रेवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस. विजिट southalltravel.co.uk. दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स. Leica एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
1: लगे हाथ आपको देते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का अपडेट भी, एपिसोड नंबर 25, लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर. कैच द एपिक कन्वर्सेशन विद टोनी ब्रेस्को, बाली ब्रह्म भट्ट, अनिका, रूबी रजा, रेडियो वाली एंड अनिसा नासिर जी. थैंक यू सो मच.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. ये है लाइका गोल्ड.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: She can't hear you, but danger always hears her coming.
9: Sab dar bhag jaye.
8: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Kher, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
10: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
11: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.

0: हमको तुमसे है प्यार जनाब अली, जंगली फिल्म का गाना था मुकेश साहब और आशा ताई की आवाज में हम तक पहुंचाया था जया जी फ्रॉम ल्यूटन और महेंद्र पटेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं आज के दिन 130 rupees एंड पाकिस्तानी रुपीज में 373.76, श्रीलंकन रुपीज 452, बांग्लादेशी टका 166, अफगानी 88.85 एंड $1 1.34।
1: Like radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £95.97 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: This is Leica. Yeah.

0: कुछ तो बात है इस नगमे में, इस गीत में, किशोरदा की आवाज में। महबूबा फिल्म का ये खूबसूरत गाना, आरडी बर्मन साहब का संगीत, आनंद बख्शी साहब की कलम का कमाल, और बिल्कुल वैसा ही ऐसे ही रुमानियत वाला गाना अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है लता जी ने भी सोलो अपनी आवाज में। लेकिन आपको इसके पीछे एक कहानी भी है, वक्त कम है लेकिन मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट कि जब लता जी ने इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया और ये जब गाना किशोरदा ने सुना तो उसके बाद अपनी सारी जान झोंक दी इस गाने को खूबसूरत बनाने के लिए, और ये कमाल उस दौर में सिर्फ काका ही कर सकते थे, और लता जी तो कमाल की है ही। अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है, उससे पहले बता दें ये गाना हम तक पहुँचाया था नीलकंठ जी, हसुमती जी और अमित पटेल जी। अगला गाना जो आ रहा है निम्मी जौहरा, इतेश कुमार, फाल्गुनी भट्ट जी की फरमाइश के पिटारे से, फिल्म का नाम है भ्रष्टाचार, सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit Kajal's Couture. .co.uk. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: Backed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
9: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद, बीकानेर वाला अब साउथ हॉल में। इंडिया फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB, बीकानेर वाला नाउ ओपन। बीकानेर वाला नाउ इन योर नेबरहुड।
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
12: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio और like a gold, आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
15: On Rag with Golden Rag.
16: तेरे नैना,
17: तेरे नैना, तेरे.
16: तुम ऐसा करो, ये गाओ.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सदाबहार हिट गाना लता जी की आवाज में, और साथ में हैं बच्चन साहब। सिलसिला फिल्म का ये खूबसूरत गाना, 1981 में ये फिल्म आई थी। लेकिन मुद्दा तो भाई आज की गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस का है, जल्दी से सुनाता हूँ आपको, बताता हूँ। कायदे प्लस कानून, तीन ऑप्शंस देंगे हम आपको गाने के, ए बी एन सी, जो कि गानों के ऑप्शंस हैं, में से आपको एक चुनना है और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। जिस गाने को, जिस ऑप्शन को लेकर हमें सबसे ज़्यादा वोट्स रिसीव होंगे, वो गाना हमेशा की तरह आज भी बनेगा आज का गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है आपके लिए, फिल्म का नाम है आंधी, गाने के बोल है तुम आ गए हो नूर आ गया है। ऑप्शन बी है आने से उसके आए बहार, फिल्म का नाम है जीने की राह। ऑप्शन सी है ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, फिल्म का नाम है आज और कल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन ए है तुम आ गए हो नूर आ गया है, फिल्म का नाम है आंधी। ऑप्शन बी है आने से उसके आए बहार, फिल्म का नाम है जीने की राह। और ऑप्शन सी है ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, फिल्म का नाम है आज और कल। लेकिन आपको आज ही वोट अपने डालने शुरू करने हैं, कास्ट करना शुरू करना है। अगला गाना हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी के संगीत से सजा हुआ। लेकिन वोटिंग लाइन हो चुके हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.90 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: बड़ा दिन, महामुकाबला यानी कि फाइनल मुकाबला स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच 8 बजे शुरू होगा। बाकी की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। लेकिन साथ ही याद रखें आपको 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस मिल सकता है हमारे स्पॉन्सर रैक लॉ की तरफ से, अगर आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Leica Gold.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network. Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
9: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
11: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल, इलफोर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Dreaming of paradise?
15: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
16: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays. All at exclusive prices.
15: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
16: At all protected.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
18: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
19: Like a goal. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जग जगले दिल दुबा।
1: क्या बात है रफी साहब की आवाज में, ये है उनकी आवाज का जादू। 10 लाख फिल्म का ये गाना सुन रहे थे हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब के संगीत से सजा हुआ इस फिल्म इस एल्बम का गाना। और इसी के साथ एक बार फिर से हमें आपको बताना आज के गोल्डन रॉ के 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए है तुम आ गए हो नूर आ गया है फ्रॉम द फिल्म आंधी। ऑप्शन बी है आने से उसके आए बाहर जीने की राह फिल्म का ये गाना है। और ऑप्शन सी है ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, फिल्म का नाम है आज और कल। जो भी ऑप्शन आपको पसंद आ रहा हो उसे वोट की तरह कास्ट करते रहें। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको जगन्नाथ यात्रा पर जहां पर अश्विनी कर रही है हमारा इंतजार।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: तो इस वक्त अश्विनी जी को कॉल लगाया जा रहा है जो इस वक्त जगन्नाथ यात्रा में है। अश्विनी जी आप ऑन एयर हैं, क्या रूपरेखा है वहाँ की, क्या बताना चाहेंगी, कैसा माहौल है इस वक्त?
3: जो यहाँ पे जी
1: अश्विनी जी आपकी आवाज कट रही है लेकिन फिर भी आप
3: सुन सकते हैं?
1: जी जी जी बोलिए
3: जी। अब जी तो यहाँ पे इतना भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, हजारों की तादाद में लोग आ रखे हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं अरविंद भाई से, ही इज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स। सो अरविंद जी नमस्कार, और जरा बताइए आज का अनुभव कैसा रहा, और अब ये पूरी जो रत्न
4: Roughly on the streets, we are talking about 6,000 to 8,000 people. But at the venue over here, we are expecting, I think, about between 3,000 to 4,000 people on the streets. Between 6,000 to 8,000 people.
3: Yeah, Anurag ji, आवाज आ रही है आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा रुक के आ रही है लेकिन पूरा यकीन है मुझे कि वहाँ पर लगातार चल रही होगी रथ यात्रा। जी जी अश्विनी जी, over to you. कुछ बोलना चाहेंगे और?
3: जी बस समझते हैं एंड फिर ये कॉल जरूर
1: एंड होगा। ओके, तो ये थी अश्विनी जी हमारे साथ जिनसे हम जगन्नाथ यात्रा का सूरत हाल पता कर रहे थे। और 4 बजे उसका समापन होगा स्टैंड मोर मंदिर में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। अगर अभी भी वक्त है, आप आसपास हैं तो इस यात्रा से आप जुड़ सकते हैं। सुनते रहें सुपर संडे वाली में।
5: Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैं प्यासा तुम सावन फरार फिल्म का ये गाना किशोर दा और लता जी की आवाज में, और अगला गाना आ रहा है, लेकिन आप लोगों को वादा करना होगा कि आप गुम नहीं हो जाएंगे इस गाने को सुनने के बाद, क्योंकि दो गाने और इसके बाद बंद हो जाएंगे आज के लिए वोटिंग लाइंस। इसलिए अपने प्यारे से गीत को बनाए विजयी, ज्यादा से ज्यादा मत यानी कि वोट कास्ट करके।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: लता जी की आवाज़ में अनामिका फिल्म का ये खूबसूरत रोमांटिक नगमा। और इसी के साथ बता दें आपको कि वोटिंग लाइन्स हो चुकी है बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या है सरप्राइज आप सबके लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के थ्रू 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 129.67 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस 373.75, श्रीलंकन रुपीस 452.13, बांग्लादेशी टका 166, अफगानी 88.68 एंड 1 US डॉलर 1.34.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £95.96 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
1: Aap sun rahe hain Golden Rag Anurag ke saath.

0: बुला। वाह भाई वाह, रफी साहब की आवाज में आज और कल फिल्म का एक गाना। वैसे हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रवि साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था, लेकिन कमाल की गायकी रफी साहब की, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को चुनने के लिए। वैसे सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे तुम आ गए हो नूर आ गया है फ्रॉम द फिल्म आंधी, लेकिन इस गाने की आंधी आज चली है। संतोष जी, विनी विनोद, प्रीति जी फ्रॉम बेल्जियम, निर्मल किरीट, संध्या भावसर जी, अजिंक्य भावे, वर्षा पटेल, इतेश कुमार, अर्जन जी, मिसेज इकबाल बेगम, रानी सुना है, जगदीश जी, हरप्रीत जी, सुदेश टैकर, मनोहर जी, जगदीश, जगतार सिंह सांघा जी, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा, रितु पटेल और शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। अब मेरा वक्त हो रहा है आपसे अलविदा कहने का। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल आ रही है सरिता जी आपको खूबसूरत नगमे सुनाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: गुड आफ्टरनून, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। ये गीत था ये वादा रहा फिल्म से, 1982 की फिल्म थी। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया मैंने 1942 अ लव स्टोरी के बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। वैसे उस फिल्म के सारे गाने ही ज़बरदस्त, लेकिन एक गीत चुनना मुश्किल था, पर मैंने चुन लिया ये वाला गीत। और मुझे मालूम है कि हो सकता है आपको भी पता चल चुका है इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म को 32 इयर्स हो गए रिलीज़ हुए। 15th of July को ये रिलीज़ हुई थी। एंड 1942 अ लव स्टोरी रिटर्न इन 8K। अनिल कपूर, मनीषा कोइराला सेलिब्रेटेड 32 इयर्स टुगेदर वी वेल इस फिल्म के साथ। और अनिल कपूर, मनीषा कोइराला और जैकी शरूफ ने इस फिल्म में काम किया था। दे ऑल गॉट इमोशनल एज 1942 अ लव स्टोरी सेट फॉर बिग स्क्रीन रिटर्न आफ्टर 3 decades। एंड विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, बनाया था, एक्लेम्ड रोमांटिक ड्रामा 1942 अ लव स्टोरी हैज़ कम्प्लीटेड 32 ईयर्स सिंस इट्स रिलीज विद द फिल्म्स लीड कास्ट मेकिंग द ओकेजन थरो हार्टफेल्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर ही अनिल कपूर ने लिखा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। ही रोट 32 ईयर्स लेटर एंड दिस फिल्म स्टिल फील्स एज क्लोज टू माई हार्ट एज इट डिड ऑन वन डे वन। एंड वी मेड दिस फिल्म विद ऑनेस्टी, पैशन एंड सो मच लव। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस न्यू दैट डेकेड्स लेटर इट वुड स्टिल बी रिमेंबर्ड विद द सेम अफेक्ट। A timeless tale of love, hope, sacrifice, patriotism, and it continues to live on across generations. Today, I'm deeply moved to see this classic lovingly restored in 8K with its sound. बहुत डोल्बी में इसे दोबारा से लाया गया है एंड डोल्बी 5.1 में, एंड ब्रिंगिंग एवरी इमोशन, एवरी नोट, एवरी मेमोरी बैक टू लाइफ। ये अनिल कपूर का कहना, ऐसा ही कुछ मनीषा कोइराला ने कहा और ऐसा ही कुछ लिखा जैकी श्रॉफ ने। तो हमें भी बहुत खुशी है कि 30 साल बाद भी ये फिल्म इतनी पसंद की जाती है। आपने 1942 अ लव स्टोरी देखी? अगर देखी तो जब रिलीज़ हुई थी फर्स्ट तभी देखी थी या फिर बाद में देखी थी? आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? मनीषा कोइराला, आई थिंक शी लुक्ड रियली ब्यूटीफुल इन दिस फिल्म। सभी का काम बहुत अच्छा था, चाहे वो अनिल कपूर थे, जैकी श्रॉफ थे, अनुपम खेर भी थे इस फिल्म का हिस्सा, जिसने भी काम किया बहुत अच्छा था। एक मुझे रंज हमेशा रहा कि आर डी बर्मन साहब का इतना अच्छा वक्त नहीं चल रहा था उस वक्त, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई और ये फिल्म रिलीज़ हुई, इसके गीत रिलीज़ हुए, तो सारे के सारे गीतों को इतना प्यार मिला, बहुत पसंद किए गए। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी। बेस्ट डायरेक्टर के लिए विधु विनोद चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया, बेस्ट एक्टर अनिल कपूर, मनीषा कोइराला सबका नाम हुआ था नॉमिनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में जैकी श्रॉफ को अवार्ड मिला था। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का आर डी बर्मन साहब को अवार्ड मिला था। बेस्ट लिरिसिस्ट का जावेद अख्तर साहब को फॉर एक लड़की को देखा। देन फीमेल प्लेबैक सिंगर में कविता कृष्णा मूर्ति जी को हुआ फॉर दिस सॉन्ग विच आई प्लेड जस्ट नाउ। एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे इस फिल्म को। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को ज़रूर इंजॉय किया। अरे भी फिल्मों की बातें करने लगी सरिता, ये भी नहीं पूछा कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। ये गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी आज ब्रिटिश स्टर्लिंग वन पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 रुपीज़ एंड 90 पैसा। डोंट फॉरगेट, आप एक्सचेंज करा सकते हैं ब्रांच में जाके ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: राइट भी कल का मैच तो इंटरेस्टिंग था. देखा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मैच था. 6-4 से इंग्लैंड जीते और तीसरे नंबर पर प्लेस में आगे फाइनल्स में. एंड आज बिग बिग बिग डे है. फाइनल यस रात को 8 बजे शुरू होने वाला है. यस 8 बजे शुरू का मैच स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में मैच है. आप जिसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी टीम को आगे बढ़ने का मौका मिले और विजय हो. और यहाँ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: भी गीतों में कुछ कॉमन है. एक शब्द है जो दोनों गीतों में आपको सुनने को मिला और अगर आपको पता चल गया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन सा वर्ड है. और अगर उस वर्ड पर कोई गाना भी याद आ रहा है तो भी बता दीजिए. हो सकता है आपकी पसंद को सरिता शामिल कर ले आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में.
1: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashback.com. CashbackRemortgage.co.uk.
8: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.

0: फिल्म पारसमणि से चुना था मैंने इस गीत को. और इस फिल्म में किसने काम किया था, डू यू रिमेम्बर? महीपाल थी एक एक्टर, महीपाल, उन्होंने काम किया था. और गीतांजलि थी इस फिल्म की हीरोइन. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया था और गाने अलग अलग लिरिसिस्ट ने लिखे थे. और सारे के सारे गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे थे. वो जब याद आए तो बहुत पसंद किया गया था गीत. और मुझे उम्मीद है कि आपने भी गीत पसंद किया. राइट, मेरे साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और रोशनी जी ने लिखा है कि सहिता जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. अब बताइए कि मैं कहाँ मिली. आज मैं गई थी कहाँ, रथ यात्रा में. और आपने शायद लाइका रेडियो पर आवाज़ भी सुनी होगी. लाइका रेडियो के साथ मिलकर रथ यात्रा का आयोजन किया था स्वामीनारायण मंदिर वालों ने, SKSS स्वामीनारायण मंदिर. और हैरो से प्रोसेशन चला था स्टैंड मोड़ तक. अब तो फिनिश हो गया होगा और हमारे साथी वापस भी आ रहे होंगे, लेकिन हज़ारों हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग थे. बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था. पूजा की गई एंड भगवान श्री भगवान जगन्नाथ जी के रथ को चलाया, हमने भी चलाया. बहुत अच्छा लगा. और सबसे बड़ी बात कि वहाँ सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. और जिस जिस ने भी आकर कहा ओ सहिता जी आपको देख के खुशी हुई, तो मुझे आपसे भी ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे काम को आप सराहते हैं. रोशनी जी थैंक यू आपका बहुत बहुत. और भी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, अब सबके नाम मैं नहीं ले पाऊँगी, लेकिन थैंक यू एवर सो मच कि अब मेरे पास आने के लिए और अपनी पहचान गिराने के लिए. Thank you. Feel Good Track,
1: brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट भी, ये गाना डेरी वैली वालों ने आप तक पहुंचाया था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा. और बीच में मैं सरिता बात करने लगी तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये गाना उनकी तरफ से था जो आप सबके लिए प्ले हुआ था. और अब कोका नूडल्स वालों वाला गाना तो बहुत प्यारा है, वन ऑफ माय फेवरेट्स. उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा.
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: अभी भी मौका है, जल्दी से बताइए कौन सा वर्ड हर गीत में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा. व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे

0: वन ऑफ माय फेवरेट्स। उम्मीद करती हूँ आपने भी पसंद किया इस गीत को। मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा भोसले जी की आवाज़ है। मेरे साथियों ने अभी तक पहचाना नहीं है, कोई कह रहा है दिल कॉमन है, कोई कहते हैं दीवाना कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं। पहला गीत था प्यार हुआ चुपके से, दूसरा गीत था ऐसा कभी हुआ नहीं, और तीसरा गीत था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और चौथा गीत था दीवाना हुआ बादल। अब तो जान गए ना कि क्या कॉमन है, जल्दी से बता दीजिए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Like a gold.
3: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
0: और ये कह रहे हैं आपसे प्यार हुआ, फिल्म का नाम है आबरू, 1968 की फिल्म, शशि कपूर थे इस फिल्म के हीरो।

0: भाई मेरे साथ ही अपनी अपनी एक्सपीरियंस भी लिखते हैं, जैसे कि अनिल जी ने लिखा कि इसकी इतने मुझे याद दिलाई मेरे फ्रेंड सुभाष पटनी की। तो मैं हमेशा पूछती हूँ आपसे कि कोई याद हो, जुड़ी हो इन गीतों के साथ, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और समीना जी, आप मैनचेस्टर में सुन रही हैं प्रोग्राम, खूब इंजॉय कर रही हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगा। रोशनी जी, सलमा जी, संध्या जी एंड प्रज्ञा जी, प्रुथा जी, अरुणा रानी जी इंसलाव एंड अर्जुन जी, निशा, संतोष इन हैरो, अनिल जी, निर्मल एंड किरत जी, देन दिव्या इन हैरो, इंतजाव, जगतार जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं जब भी आपको आफ्टरनून लिखती तो आप मुझे करेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारे वैंकूवर में तो मॉर्निंग है अभी, तो गुड मॉर्निंग टू यू। मनु जी, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, आप सभी का, एंड वजाहत जो कि अलेक्सा पर सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
3: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
10: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: क्या बात है लता जी एंड किशोरदा की आवाज़ें आपने सुनी। फिल्म का नाम था महबूबा। महबूबा 1976 में आई थी और ये फिल्म रिलीज़ किस दिन हुई थी पता है आपको? ये रिलीज़ हुई थी आज ही के दिन इन 1976। शक्ति सामंत साहब ने बनाई थी एंड राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा और नासिर हुसैन ने इस फिल्म में काम किया था। राहुल देव बर्मन जी का संगीत था और आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के गीत। एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन, जैसे कहा कि गुलशन नंदा जी के नावल पर ये फिल्म बेस्ड थी और उस नावल का नाम था सिसकते सांस। गुलशन नंदा के बहुत से नावल्स पर बहुत सी फिल्में बनी हैं, लाइक कटी पतंग भी उनके ही नावल पर बेस्ड थी। राजेश खन्नाज आइडिया फॉर द सॉन्ग्स बिकॉज द स्टोरी स्पैन्स टू लाइफ टाइम्स। राजेश खन्ना रिपोर्टेडली वॉन्टेड द सॉन्ग्स इन द पास्ट लाइफ पोर्शन जो है वो संग बाय मन्ना डे साहब एंड प्रेजेंट लाइफ पोर्शन वो चाहते थे किशोरदा गाएं। एंड आइकॉनिक सॉन्ग इन टू वॉइसिस मेरे नैना सावन भादो, और ये गाना किशोरदा ने भी गाया, लता जी ने भी गाया और बोथ वर्जन्स बिकेम क्लासिक्स एंड वी आर स्टिल Listen to these both songs and love those songs. Punjabi folk inspiration bhi thi. Ye gana jo aapne abhi abhi suna, the melody of Parvat ke Piche was inspired by the traditional Punjabi boliyan song Sade Tan Vede Vere Vich. Sade Tan Vede Vich. Ye gana Surinder Kaur aur Prakash Kaur ne gaya tha originally. Aur aise bahut se facts hain is film ke saath saath, jaise like रियल पैलेसेस लोकेशंस चुनी गई थी और वहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। राजेश खन्ना की ये सिक्स्थ फिल्म थी इन लाइन विद शक्ति सामंत। और उन्होंने पहले कौन कौन सी फिल्मों में काम किया था क्या आपको याद है? शक्ति सामंत के साथ उन्होंने आराधना की थी और कौन कौन सी फिल्में थी जल्दी जल्दी याद दिलाइए सरिता को, सरिता भुलक्कड़ है ना, भूल जाती है बड़ी जल्दी। सो एनीवे आराधना में उन्होंने काम किया था शक्ति सामंत जी के साथ। एंड इसके अलावा उन्होंने कौन सी फिल्म दी, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, देन अनुराग एंड अजनबी, और ये छठी फिल्म थी। अनुरोध में भी काम किया था एंड अलग अलग में भी। सो बहुत सी यादें हैं इन गीतों के साथ आपकी भी जुड़ी हुई। और दूसरा गीत जो पहला गीत सुनाया मैंने आपको यस बॉस फिल्म से, वो भी फिल्म इसी महीने यस 18 जुलाई यानी कल के दिन रिलीज़ हुई थी, क्योंकि कल बहुत सारे बर्थडेज थे, बर्थ एनिवर्सरीज थी, तो मैं कल नहीं बता सकी थी। लेकिन यस बॉस कल के दिन 18 जुलाई 1997 में रिलीज़ हुई थी। अज़ीज़ मिर्ज़ा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था एंड शाहरुख खान, जूही चावला, आदित्य पंचोली की ज़बरदस्त भूमिकाएं थी। एंड फिल्म का संगीत दिया था जतिन ललित ने। और इस फिल्म को बहुत से अवार्ड्स मिले भी थे, नॉमिनेशंस भी हुई थी इस फिल्म के लिए। 43rd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अभिजीत भट्टाचार्य को मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के लिए अवार्ड मिला था। एंड नॉमिनेशंस भी बहुत थी, शाहरुख खान बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस जूही चावला, बेस्ट विलन आदित्य पंचोली, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित एंड बेस्ट लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब फॉर चांद तारे तोड़ लाऊं, जो गीत मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल किया। उम्मीद करती हूँ गीत दोनों पसंद आए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी आज आपका एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड आपको दिला सकते हैं 128 रुपीज़ एंड 90 पैसेज। एंड आप ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं एंड SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: Right, भी कल का मैच था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच और जिसने इंग्लैंड को थर्ड प्लेस पर डाल दिया है एंड आज बड़ा मैच है, फाइनल मैच है सभी की। बहुत बिजी होंगे आप शाम को, लेकिन कान फिर भी रेडियो की तरफ रख सकते हैं। शाम 8 बजे शुरू हो रहा है ये मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच, और देखते हैं कि कौन किसकी जीत होती है, कौन फीफा का बड़ा सा ट्रॉफी लेकर जाता है। और ये बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk।
0: ओके, अगला गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म हीर राजा, 1970 की फिल्म जिसमें राजकुमार और प्रिया राजवंश थे। इस फिल्म के दो गीतों में से डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सरिता के लिए, तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या तेरे कूचे में तेरा दीवाना, कौन सा गीत आपको सुनना है जल्दी से बताइएगा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
1: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
1: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
6: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
1: Visit kajalskachor.co.uk.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
8: Shaam chalne lage.
7: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
9: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
10: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
9: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
10: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
9: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
10: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
9: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
10: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
11: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
12: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
13: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
1: Like a goon.
14: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे Feel good track brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बहुत से मेरे साथियों ने इसी गीत को वोट्स दिया और कहा कि ये गीत ज़रूर प्ले होना चाहिए. थैंक यू एवर सो मच. इनफैक्ट सिर्फ एक वोट था फॉर अदर सॉन्ग एंड दैट वाज किरण. थैंक यू आपका भी. फिर किसी रोज़ आपकी पसंद को भी पूरा करूँगी. इंतुषा, मानसी जी, रितेश जी, हरप्रीत, मिस शेख, निर्मल, किरत जी, प्रज्ञा जी, तोची जी, अजी, निक, भावे एंड दिव्या जी, निखिल कांत इन वोकिंगम, हरप्रीत एंड नीलमानी. नीलमानी, आई थिंक आपने मुझे पहली दफ़ा मैसेज लिखकर भेजा है. थैंक यू सो मच. आपको भी गीत सारे के सारे पसंद आ रहे हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगता है. बहुत से नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वक्त है ना तेज़ी के साथ दौड़ता है, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर देती हूँ आपके व्हाट्सएप का. रानी जी, थैंक यू सो मच आपका भी. चलिए भाई, बता दें कि ये गाना आप तक पहुँचाए था डेरी वैली वालों ने. और इस गीत की खासियत ये थी कि इस गीत को लिखा कैफी आजमी साहब ने और मदन मोहन साहब का संगीत था. आप सभी जानते हैं हीर राजा फिल्म का गीत क्यों शामिल किया, क्योंकि ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज हुई थी और 19th of July in 1970. राजकुमार प्रिया राजवंश ने इस फिल्म में काम किया था. चेतन आनंद साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और जैसा कि मैंने कहा मदन मोहन जी का संगीत और कैफी आजमी साहब की कलम से लिखे गए थे ये सारे गीत.
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a gold.
0: अभी जुलाई के महीने में बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हुई, उन्हीं में से एक थी तुमसे अच्छा कौन है.

0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ गीत कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 17th यानी फ्राइडे को हुई थी, 17th of July 1969 में। शमी कपूर और बबीता ने इस फिल्म में काम किया था और प्रमोद चक्रवर्ती ने इसे डायरेक्ट किया था। और भी बहुत सी फिल्में हैं जो इसी हफ्ते, जो लास्ट वीक गया है उसी हफ्ते हुई हैं रिलीज़, लाइक दिल है कि मानता नहीं, देन जुर्म वॉज ऑन 13th of July एज़ वेल। 14th of July को फिल्म रिलीज़ हुई थी जवानी दीवाने, उसका गीत मैंने किया हुआ है, क्यों देखते हैं कि आपको पसंद आता है या नहीं। लेकिन आइए ज़रा अब ये जान लें। Like Extra Podcast Update। राइट, इस दफ़ा का टाइटल है लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर एंड कैच द एपिक कन्वर्सेशन विद डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रह्म भट्ट, एनिका, रूबी रजा, रेडियो वाले एंड अनीसा नासिर फ्रॉम द सेक्रीफाइसेस प्रेजेंटर्स मेक फॉर देयर करियर टू द अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस अलोंग द वे। और इंटरेस्टिंग होगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा इज़ हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड। Visit travelhubworld.com.
2: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
3: 25? Seriously?
2: Sounds like Ojo time.
3: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
2: Sorry about the wait. How can I help?
3: You can help me celebrate. I won.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry! Limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner. Like

0: जवानी दीवानी से चुना था मैंने इस गीत को, और ये फिल्म भी जुलाई के महीने में ही रिलीज़ हुई, 14th जुलाई 1972 को आई थी ये फिल्म, रिलीज़ हुई थी। जया बच्चन एंड रणधीर कपूर ने इस फिल्म में काम किया था, नरेंद्र बेदी जी ने डायरेक्ट किया था और उन्हीं की स्टोरी थी। आर डी बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गीत को। आई होप यू लाइक्ड इट। राइट, थोड़ी सी करेक्शन कि मैंने जो गीत प्ले किया तुमसे अच्छा कौन है, दैट वॉज फ्रॉम द फिल्म जानवर, जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ द फिल्म इज सेम, तुमसे अच्छा कौन है, तो आई जस्ट कैरीड इट ऑन कि मैं वही उसी फिल्म का गीत है इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल कर दिया। लेकिन करेक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड निखिल कांत, आपने वोकिंगम से मुझे मैसेज लिखा कि सहिता जी वो तो जानवर का गाना था। हाँ, गलती से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, या मिस्टेक से कभी कभी गलती हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, और वो गीत आ रहा है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का, जिसका आपको शायद इंतजार हो। लेकिन पहले
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट, वे एक पाउंड के बदले आज आपको इंडियन रुपीस मिल सकते हैं 129 रुपीस एंड 84 पैसा, पाकिस्तानी रुपीस 373.71, श्रीलंकन रुपीस 452.4 एंड बांग्लादेशी टका 166.7, अफगानिज 88.64 एंड US डॉलर्स 1.34।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में है 95 pounds and 96 pence में एक ग्राम सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
3: ये है Like a Gold.
0: रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आप सुनने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि भी क्रिकेट आज मैच देख रहे हैं ना, सबकी आंखें लगी हुई हैं टेलीविज़न पर, तो कान तो इधर है ना, मेरी तरफ होने चाहिए। वेल, इस वक्त मैं लेटेस्ट स्कोर आपको जल्दी से बता देती हूँ। 196/1 हो गया इंडिया का स्कोर एंड दे नीड 192 runs फ्रॉम 19.4 overs टू विन द मैच। वैसे इंग्लैंड बहुत अच्छा खेले और उन्होंने 387 का इन्हें टारगेट दिया। चलिए अब इस गीत को सुन लें।

0: भाई सभी वाइफ्स की तरफ से हस्बैंड्स के नाम, हस्बैंड्स की तरफ से वाइफ्स के नाम इस गीत को मैं करती हूँ। और हम चाहते हैं इसी तरह से आपका प्यार, आपका संबंध इसी तरह से बना रहे। ख़ास तौर पर हितेश जी, यू आर नॉट फीलिंग टू गुड, तो संध्या जी की तरफ से मैंने किया है इस गीत को आपके नाम। उम्मीद करती हूँ आपने इसे अच्छी तरह से इंजॉय किया।
1: ये है लाइका गोल्ड,
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
3: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
4: सच?
5: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
6: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट of India now in Ilford.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
13: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
14: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
16: Bye.

0: This is Leica Gold, non-stop classics.
1: Another beautiful song, जो हमें 6 बजे के समाचारों तक पहुंचाएगा. समाचारों के उस पार मैं सरिता आप ही का इंतजार करूंगी, जो मेरे साथ ही अभी जुड़े हैं. यस, अभी सुनना शुरू किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एंड काइंड मैसेजेस.
2: मुकद्दर

0: प्यार होता है और क्या होता है जब चोरी चोरी आंखें मिलती हैं तो ऐसा ही होता है ना। किशोरदा की आवाज़ में पाप की दुनिया से ये गीत आपने सुना एंड ये 1988 में फिल्म आई थी। और आज के प्रोग्राम के थर्ड आवर का पहला गीत मैंने करीब फिल्म से चुना था। इस फिल्म के गाने अच्छे थे और इस फिल्म के ज़रिए एक नई आवाज़ हमें सुनने को मिली थी। शी वॉज इन इंडियन आइडल और सम रियलिटी शो संजीवनी जी ने गाया था इस गीत को और अनु मलिक का संगीत था। एंड करीब में बॉबी देओल थे और हीरोइन भी नई थी जिनका नाम था शबाना रजा। एंड विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। राहत इंदूरी ने लिखे थे सारे गीत। बड़े क्यूट गाने थे इस फिल्म के, बड़े सिंपल से। सो मुझे उम्मीद है कि मेरा चुना हुआ गीत आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और अब भाई आर्टिस्ट ऑफ द वीक में रवि जी के गीत दो हफ्ते से आप सुन रहे हैं और बहुत से अच्छे अच्छे गीत आप सुन चुके हैं। जो मैंने चुने हैं गीत, एक गीत चुनना था पर मैंने दो गाने चुन लिए हैं तो मुझे दोनों गीत पसंद हैं। तो एक बन रहा है आर्टिस्ट ऑफ द वीक के ज़रिए आप सुनेंगे उस गीत को और दूसरा गीत आप तक पहुंचाएंगे डेरी वैली वाले। लेकिन उससे पहले भी बहुत से काम और करने हैं, जैसे कि
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, bhi aaj aapka one British sterling pound can get you 120. 28 rupees and 90 paisas and you can transfer the money, exchange the money in the branch or iske ilawa online or SBI YONO mobile app ke zariye aap transfer kar sakte hain. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: रेकला वाले आपको ये कहना चाह रहे हैं कि 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं किसी भी मौजू पर तो आप जस्ट मेंशन कीजिए लाइका और आपको फ्री एडवाइस मिलेगी। और अब मैं बता दूं आपको कि आप बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 8 बजे और टेलीविज़न ऑन हो और मैच देखा जाए। यस, आज बहुत बड़ा मैच है, संडे 19 जुलाई फाइनल हो रहा है फीफा का। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में है ये जंग, देखते हैं किसकी विजय होती है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं तो लिखकर भेज सकते हैं। और जो मेरे साथी बराबर मैसेजेस लिख रहे हैं उनका थैंक यू।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
4: Leica Gold.
5: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
6: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
7: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
5: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
6: Thanks. Playtime's over. Lovely.
8: Feel the fun. Play Ojo.
9: 18 plus, gamble aware.
10: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
11: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit kajalscouture.co.uk.
12: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344, a 24-hour line.

0: मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ मैं, आई लव दिस सॉन्ग। और इसे आशा जी ने पूरी फीलिंग्स के साथ गाया, बहुत प्यारा गीत था। रवि जी का संगीत, फिल्म का नाम आज और कल, 1963 में आई थी ये फिल्म। और डेरी वैली वाले कौन सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं?
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Film ka naam hai Shehnai. आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें आप सुनने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत गीत है। ऐसे गीत अब आजकल सुनने को नहीं मिलते हैं। पहचान गए हैं ना कौन सा गीत है? सदियों पुरानी जिन मेरे साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये गीत उन सब के नाम। एक बार फिर से रवि जी का संगीत।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: और लाइका गोल्ड पर सरिता अब आपको बताने जा रही है. लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू बी द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी, द स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द आइकॉनिक रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड इज नाउ कमिंग टू ओवर वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर. क्रिएटेड बाय नितिन पालन MBE, फाउंडर ऑफ सनातन इवेंट्स एंड फीचरिंग स्टनिंग कोरियोग्राफी बाय द Bollywood Dance School Team. This English language production Ramayan ki timeless story ko 4 powerful chapters as a specially composed 7 songs track soundtracks honge aur a truly international cast ke sath stage par लेकर आ रहे हैं. स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्री शो है, शाम 5 बजे से 5:45 तक चलेगा और मेन परफॉर्मेंस 6:15 से 9:30 PM तक चलेगी. तो देर किस बात की है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मैजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए और बुक योर टिकट्स टुडे एट www.diwalistory.com.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: जी हाँ, अभी आ रहे. Brought to you by Southall Travel. ये काम भी कर ले पहले फिर गाना आ रहे. Southall Travel is pleased to announce that कि अब बहुत सारी दुबई की डील्स हैं उनके पास और आप अगर बुक करना चाहते हैं तो Southall Travel का नाम याद रखें और उनका नंबर 0208-574-8410 at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Another beautiful song by Asha Bhosle and ise bhi compose kiya music director Ravi ji ne. Film ka naam tha Do Badan. आशा पारी की एक्टिंग, मनोज कुमार की एक्टिंग एंड प्राण की एक्टिंग, सभी की एक्टिंग बहुत खूबसूरत है एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स.

0: कभी वैसे भी अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कब आता है, जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। और मेरे भी जाने का वक्त है, और जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह। सैंडी शाह के साथ आप विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुन पाते हैं एवरी वीकेंड पर, सैटरडे एंड संडे। और उनके जाने के बाद आप गोल्डन नाइट्स में, ओवरनाइट सर्विस है हमारी गोल्ड नाइट्स, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीत होते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, नो प्रेजेंटर्स देयर, तो आप आराम से म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही मैं बता दूं कि मेरे जाने के बाद सैंडी शाह इधर आ रहे हैं लाइका गोल्ड पर, एंड मैनचेस्टर रेडियो पर आप सुन पाएंगे देसी बीट्स विद जैसी, और जैसी के साथ, और लाइका रेडियो पर आप अब सुन पाएंगे कि नहीं, नीरज इज कमिंग एट 7 o'clock। अभी तक वहाँ थी कौन, आपकी प्रेजेंटर एनिका। वेल, मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से मुझे पूरे 3 घंटे तक मैसेजेस लिखते रहे हैं, बताते रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं, प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह से मेरा साथ हमेशा देते रहें, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ होते हैं, तो समय भी जल्दी से बीतता है एंड पता रहता है कि मेरी पसंद आपकी पसंद बन रही है। आज बहुत से गीत मैंने रवि जी के कंपोज किए हुए सुनाए आपको, कुछ उन फिल्मों के गीत सुनवाए जो आज के दिन रिलीज हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप बड़े प्यार से हमेशा एवरी वीकेंड मेरा साथ दीजिएगा। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, auto protected.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए, या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
4: Outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: यार, कई बार मुझे अपने गाँव के छोले छोले भटूरे याद आते हैं, वही स्वाद वही खुशबू।
9: तो रुक क्यों रहा है, वही देश का असली स्वाद अब मिलता है हाउस लो के बीकानेर वाला में।
8: सच?
9: अरे बिल्कुल, छोले भटूरे, राज कचौड़ी और मिठाइयों का असली टेस्ट जैसे माँ के हाथों का बना हो।
10: बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया, अब हाउस लो हाई स्ट्रीट में, आज ही विजिट करो।
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड पोटैटो चिप्स नाउ।
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: सरिता सब Subawal with your weekend classics.
15: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: What a wonderful rare song from the film Bhavra Nan, 1950, Mukesh or Raj Kumari. Going forward, the greatest album ever made, as I would always say, 1949, Shankar Jaikishan ka Sangeet, film ka naam Barsaat, Lata Mangeshkar ki awaaz. Phir uske baad, lovely song, Talat Mahmood साहब की आवाज में, फिल्म का नाम लागी छूटे ना राम, और ये था चित्रगुप्त का संगीत. एंड इट्स 1963, सो क्वाइट न्यू फॉर विंटेज गोल्ड, बट ट्रूली अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग. एंजॉय.
1: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स. WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. Vintage Gold on Like a Gold. Sandy Shah live on Like a Gold, Greater London.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1।
2: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद, बीकानेर वाला अब साउथ हॉल में। इंडिया फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। बीकानेर वाला नाउ ओपन। बीकानेर वाला नाउ इन योर नेबरहुड।
3: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
4: Vintage Gold on Like a Gold.
5: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
6: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: And आजकल ये व्हाट अ वंडरफुल साउंडट्रैक रियली इज. आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे आवाज मुकेश की, अ वेरी रेयर सॉन्ग. फिल्म का नाम था फ्लैट नंबर 9 फ्रॉम 1961. उषा खन्ना का संगीत. इट स्टार्ड अशोक कुमार और सईदा खान. और फिर उसके बाद हम सुनेंगे द टू सिस्टर्स टुगेदर, आशा भोसले, लता मंगेशकर, शंकर जयकिशन का संगीत. फिल्म का नाम होगा हलाकू.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Sandy Shah. WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
2: Yeah. Like a gold.
1: Vintage gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: The voice that defined a complete era, the songs that touched millions. She's coming to London soon.
0: Classic Nagme, aapke apne Laika Gold par.

0: Like a gold.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
5: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल evening of timeless ghazals. The prince of ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: You know how fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Classic Nagri, aapke apne Laika Gold par.

0: like our gold.
1: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
2: 25? Seriously?
1: Sounds like Ojo time.
2: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
1: Sorry about the wait. How can I help?
2: You can help me celebrate. I won.
3: Feel the fun. Play Ojo.
4: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gamble aware. T's and C's apply.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: But how? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।